0: நிலையத்தில் நேரம் 7:45.
1: छोटे साहब, वैक्यूम एवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।
0: விவத் பாரதி தமிழ் பண்பலை 102.3 இணைந்திருக்கிறோம்.

0: देखो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, शुद्ध नमक देना। शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता
1: है। ऐसा बोलो ना,
0: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान।
2: ये हुई ना बात।
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।
4: வணக்கம், நான் பிளேபேக் சிங்கர் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் எஸ் என் சுரேந்தர், விவித் பாரதி.